गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण चलो मार्ग गोविंद। एक केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर की उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीव। ए रचना पवित्र हो जाती है जदो नाम का अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रे जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया है उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सिखे हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

0: अजूनी से भंगो प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ। बाबा जी असी भी इन्हें दर्शन करन आया किथे मिलेंगे?
2: सचखंड विखे।
1: सचखंड?
2: हाँ बेटी, गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्होंने दर्शन नहीं। निराश ना हो बेटे, उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड ने संतोख सर की सेवा करा रहे ने।
1: तुंग पिंड?
2: हाँ, तन गुरु अमरदास, तन गुरु रामदास,
1: तन गुरु अमरदास,
3: तन गुरु रामदास।
1: किन्नी सोनी थाए, तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान में लानी नाले पता कर लांगी तुम पिंड किन्नी दूर है। अच्छा
3: छेती आना। तन गुरु रामदास।

0: हे परमात्मा, तुम्हारे पुकार सुन ले, माता के दरबार स्वीकृत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी, धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास, रजनी
0: स्वामी
2: बस तो जाए सरोवर।

0: तू ताने पुत्र ते ताने तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
2: बेटी,
1: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी, माँ,
2: बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा।
1: इतना ना को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं ऐसा, तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास, वो सचमुच सर्वशक्तिमान, वो उस दिन भी लाभ परंपरा है।
0: राजा दूरीचंद?
2: नहीं संत जी, सिर्फ दूरीचंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाट के लायक नहीं रहा। वही राह बना ली है जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
1: पिताजी,
2: बेटी, मैं इसे नहीं कह रहा सिर्फ तुम घर जाओ।
1: नहीं पिताजी, जितो मेरे पति ने नवा जीवन मिले सारे लिए कोई थान सुलखनी।
0: रजनी ठीक कहती है राजा दूरीचंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या का फल समुचे तौर पर ऐसे स्थान से मिले है। यह धरती बड़ी पावन है, एनू ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजवी बेरी है, ते ऐ छपड़ी अमृत का कुंड है।
3: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पर्दा टक लगा के इसनों अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान इनान करके मन निर्मल के तन पंचन करते हैं। की हिंदू, की मुसलमान, की सिख, की ईसाई, अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

तो डर लगता है फिर। मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है, मुबारक है जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ, ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं यह आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ़ के यह सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पे ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह के पावन दरबार च आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिलना। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वह कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो वह कहन लगे तैनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इतने भी आते ने दर्शन बख्शते ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियों नू आके नाम जपन निरंकार नाल जुड़न का उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलता रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बार मैनू वेख लैण सियाणियां ने बहुत कहा तैनू वैदा ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते ले आए दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्हें विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना के कुछ व्यवंता होनगियां पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने यह कहन लगा मैनू इत्थे प्या रहन दिओ जिस वेले वह बाहर निकल गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दवा दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछया क्यों बई की गल है दरबार ने दस्या महाराज रोगी आया वह कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना प्या प्या सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया महाराज नूं वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियों ने कहा प्यार हो महाराज ने भी इशारा किया मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहना है कि कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहता सा तुसीं मैनूं वेख लो साहिबां ने मुस्कुरा के उही गल कही भलिया लोका तैनू वेखण के वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कीड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड़ वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नू कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वह जिहड़े मेरे अंदर दे रोग ने वह वैदा ते हकीमां नू नजर नहीं आउंदे साहब जी वह तो तुसीं देख सकते हो इस करके क्या पहला मैनू अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा ते ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया ते गल की साहब हस पे कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होने के दिन आ गए यह सच करके जानना जिस वेले मनुख का अपने आप ते ध्यान ही पै जावे ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंध न करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एह आस एह आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मूह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दीयां बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देगा लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल वेखे लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने आ वड़ियाईयां भी लोकां दे घरां दीयां वेखने आ जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना पण है काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर ते बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ए लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ये खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह करांदियां हैं साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहां करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि वह तो लोग जिन्हां दी गल महाराज ने जिक्र किया इत्थे वह लोग तो बाहरों भी गंदे रहिंदे सन सफाई बाहरले जीवन की भी नहीं रखते बाहरों भी मर्यादा नहीं रखते पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संतां वाला वेस धारण कर लिया साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग में आया है कि मैं लोगों को फसावा किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोगों को किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसाना वाला साधा वाला फकीरा वाला वेस है औ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोगों को ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बणदा भी बहुत हां मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहां करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरिया रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर उहदा भी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आ खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदे जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है उहदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवेगा मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक का यह शब्द साहबा की यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नू जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने गुनाहां ते ध्यान पाउण का ख्याल आ जाए तो साहिब पातशाह

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच

गोविंद ना भजे अहम बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

भगत कबीर जी, कई सज्जन सवाल करते ने कि नाम किवें जपना है, तो भगत जी बड़ी सुंदर इलाही बाणी द्वारा जवाब देंदे ने, हे भाई एदां जपो

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है, कोई हिसाब ला सकता है, क्योंकि उसकी किरत का हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार, तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ, तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे, तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत ला ली है, तू किन्ना सियाना होएगा। साहब कहते ने मत समझी वो सियाना कोई होर भी है जिसने तेनू शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेनू वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दिया सारिया बख्शिशां भोगदा है ओदे नालों सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझ लग पैना उन्हें कोई गलती की है, मैं ठीक कर दिया, जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया, मैं उन्हें ठीक कर देवा, जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया, मैं सुधार कर देवा, अपने आप नो सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप नो सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान, एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है, पता सारा है भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां की सारी निष्ठता नहीं आती, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहते हैं तेनों चेता है, तेनों ख्याल है, जिसने तेनों इना कुछ दिता है,

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

जो पति ने सचियां गल्लां कहियां, जो परम पिता परमात्मा दा हुक्म उनू जो ज्ञान विच आया होया सी रोज दसदा, पर ए सोच दिए तेरे नाल मखौल पिया करदा, एवें हासा करदा है। इन्हां सच्चियां गल्लां नू ओ हासा करके जानदी है, पर एक दिन उदों पता लगा

कोई रोक नहीं सकता। जिन्हां ते माण करदा है भरा भाई रिश्तेदार दोस्त मित्र एथों तक के सब तो नज़दीकी रिश्ता है इस्त्री दा वो भी साथ छड़ जांदी है। सारे कट्ठे होके फिर दीवान दे उत्ते रख के बन के इसनू चार बंदे अपने मोढ़ियां ते चुक के तुर पैंदे ने। जेड़े इसनू मेरा मेरा करदे सन ओही हुण इसनू अगन भेट करन वास्ते ओही इसदा अंतम संस्कार करन वास्ते तुर पैंदे ने। ऐसी है ये दुनिया ऐसा है ये संसार। हजूर गुरबाणी भी सानू उपदेश फरमान करदे

सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए। जदों सिख राज दा पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी कीता उस सिक्के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते ए सिक्का चलाया। सिख राज दा पहला सिक्का जिदे बोलां दा ए मतलब है सिक्का जद हर दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा। इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है। गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का चालू होया। सिक्के दे दूजे

माधुदास बैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, ओदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, ओदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया। योग सिखिया ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदे। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दी अखां नहीं हुंदियां। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हों पलंग तो थले डेग देंगा
और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं। पलंग नू उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधो दास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सके। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया कि

महाराज के दर्शन किए, ये हाथ अपने आप जुड़ गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधोदास नु देखिया, उस बैरागी ने, उस बैरागी माधोदास ने गुरु महाराज नु देखिया। बैरागी माधोदास वरिया तक योग साधना विच मगन रहा से। इस तपस्या द्वारा उदी आत्मा जाग पई सी, उस दे अंदर पवित्रता सी, सफाई सी, उचता सी। इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

जिसनों कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि, जिसनों जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने, जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने। ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां सारिया ने

महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जांदा। गुरु साहब ने अपने पांच तीर दिते जिन्हां दे नाल सुनने लगे हुए सन। पांच सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों पंजाब वल तोर।

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर कहा, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा की, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ

अपने लीडा विचों इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने तेज दे नाल माधोदास बैरागी नूं बंदा सिंह बहादुर बना के पंजाब वाल तोरिया जेड़ा क्यामतां जगाउंदा पचाल लिआउंदा खून दियां नदियां वगांदा होया पंजाब वाल वध तुरिया। किसी ने पुछया बंदा सिंह तुसी इह की कर रहे हो तां बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा मैं जालमां दा नाश कर रहा उन्हां किलियां नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने उह शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। इह कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं तुरिया जा रहा है।

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के

वो नजारा अखा सामने आया, अखा गुस्से ना लाल हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजिया वंगारद्या होया आख्या, एहो ही वो सरंद है जिस जगह मेरे गुरु के नन्ने नन्ने मासूम बच्चिया द्वार विच चुनिया गया। मैं चाहना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो। नीयां विच साहबजादे चिणे गए, देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे। हाल चला दियो, इस शहर नू मिट्टी च मिला दियो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज ने सरहद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल, अहलकारां नाल, जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया।

गुरु साहब ने एक खालसा खालसा पंथ धर्म देश कौम की रखिया वास्ते मजलूमां की रखिया वास्ते पैदा किया। यह हुई मकसद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनाया अते अपना आप गुरु के आशय अनुसार गुरु की सेवा करदिया होया